तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

वफा तो बेकदर, यार बोले दे खबर, मैं दुनिया से बेखबर, ए खुदा मुझे दे सबर, तू साथ है तो किसका डर, वो देता हर दिल में घर, तो क्यों इतना बेसबर। जिंदगी खेल नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, कितना कुछ झेलू।

0: कोई कैसे महफूज है मेरा सवाल किसी का उरूज
1: सर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर हर सर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

0: Your home for community. CJMR 1320.
1: एक अंधेरी रात, एक बरसात, एक खौफनाक मौत और एक लड़की.

0: बच्चों को चूस कर गुठलियाँ फेंक दी है।
1: पेंट चोटियाँ चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खानी किसड बहनू रेला आन गिया हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: तू फिर आ गया, तैनू पिछली बार कही गल याद नहीं।
1: साडा देख देख हाल हाथ जोड़ी बैठा काल बंदे सारी ही रैकेट विच ईड़े ने मौलके नू वांगू परे सिर परचे।

0: दादे दा हौसला ते दादी दियां दुआवां ने सब दे पैर छू सका दुनिया ते जिन्नियां भी मामां ने। मेरे लिए दुनिया गोरी आ भावे मैं आप पक्के रंग दा हां, मैं भैणा लई इज्जत ते मामां लई दुआवां मंगदा ते मामां लई खैर मंगदा।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल।

तेरे होठों का तिल मुस्तकिल, दिल का कातिल है तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन।

0: नियाज हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

ज्यादा ना सुना कर उनके, तू ज्यादा ना सुना कर उनके, बस अपने ही किया कर मन के, बस अपने ही किया कर मन के। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू।

अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

से चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।

का दर है, ये शहरे मोहब्बत मेरा हम सफर है, केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें, है दिलकश ये मंजर, जो मांगी दुआ में

सफर तू बता मुझको चलना किधर है, मुझको तलब खुद से मिलना किधर है, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया की जन्नत।

रात बे वफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।

0: CJMR 1320, the voice of the city.
1: आ कौन आ बिना गल्लो नहीं अखा जी चाड़ी फिर दे

कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: बच्चों को चूस कर गुठलियाँ फेंकती है।
1: पिंड चोटियाँ चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितन बहनू रेला आन गिया हुण नी जज जमानत दिंदा।